ना तेरा सुलशुन लेन हे ईमानदारगण तुम्हें इंसाफिर ऊपर कायम थाको एवं अल्लाह ताला जन्य सत्य साक्ष्य प्रदान करो जदिओ ताते तुम्हारे अथवा तुम्हारे पिता मातार ओ आत्मीय स्वजने क्षति है अल्लाह ताला खास बंदा तारा जरा जमीन ऊपर बिनय संगे चले अल कुरान बांग्लादेश बेतार खुलना এখন প্রচারিত হচ্ছে পবিত্র জোহরের নামাজ রাজান এবং দোয়া।